0: हो सॉरी यार, तो फिर भी जी हुए
1: ऐसे
0: एंड दूसरे यार यू हैव अ चांस इन जस्ट इन अ कार ओवर फ्रॉम योर रिलीज
1: ऐसे
2: We headed from the district to DC on a drop off for evidence.